जे संग न चाल सुतेरे तना। ए जीव ए तन ए माया दौलत तेरे नाल नहीं जान, इन्हें तेरा साथ नहीं देना। सह पंचम पातशाह फरमान कर दे ने संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। ए मूर्ख मन क्यों तू माया दे विच उर दिया वे, क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए, अपनी सलीयत नु भुली बैठा, माया ने ते तेरे नाल ही नहीं जान। संग न चालस तेरे तना, लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत। क्यों बद शीशा लै बद दुआ लै के माया नु अकत्र कर रहे, माया कठी ना कर। ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं, निर्दन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना तरे, निर्दन नु कोई आदर भी नहीं देंदा, माया तो बिना गुजारा नहीं। पर सैम आख दे ने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनु परमेश्वर दा ना ना भुला दे, तेनु वाहेगुरु भुल ना जावे, माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी। सैम फरमान कर दे ने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत, जिस माया नु तू अकत्र कर रहे उस माया तेरे नाल नहीं जाना। संग न चाल सुतेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, किस जुग में शोभा नाम की। पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी, कहिंदा माया दे नाल ही सब कुछ है। जी माया ते जहान है, जी माया ते साख संबंधी ने, जी माया ते रिश्तेदार ने, जी माया ने ते तियां पुत्र ने, नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नु कुछ समझदा है, माया तो बिना कदर ही नहीं। पर सैं फुरमान कर देने जीव ना, इस जुग

chiamata Gesù di एक दिन आपने अपनी प्रतिज्ञा तैयार की, मन प्यार से सता रहा है, आप रसोई च बह के गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, भोजन तैयार किया, एक ख्याल कलगी किसी पातशाह जी ने अज अपने अपनी प्रशाद माता जी श्री जी जिसे कलगी के पातशाह जी ने पुत्र जान के पूर्ण प्यार भी करते हैं, उसे धन गुरु नानक की गद्दी के मालिक जान के पूर्ण सत्कार भी करते हैं। सिख न बुलाया, सिखा कवि जी ने बुला के लिया, सिख आए हाथ जोड़ के अरदास की थी, होत्र लोकी नाथ सदगुरु माता जी याद कर दे, श्री दशमेश पिताजी करे आए, नमस्कार की थी माता ने, थोड़ा आसन बिछाया यार बैठ, प्रसादे का थाल परोस के हजूर दे के रखे। कवि जी साहबजादे भी आ जाने सचंदा माता जी गुरु जी दसवें पातशाह जी ने कवि जी करके बुलाने, नाम नहीं सी लेंदे क्योंकि छेवें पातशाह जी का नाम सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब, दसवें पातशाह का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, अदब करते सन, नाम नहीं सी लेंदे कवि जी करके बुला। मेरे हजूर ने जो कुछ माता ने वचन किया उन्हों सफल करते हैं, जितनी बाणी उचारी है उपर लिखे है कवियो बात आखो श्री है कवियो बात, साहबजादे भी आ जाते कुछ इशारा किया, सिख भजा गया साहबजादे भी आ, चार आसन होर भी साहबजादे बैठ गए, चार थाल होर परोसे, इन्हों के अगे भी रखे साहबजादे, मेरे कलगी रस्ते पातशाह जी भोजन छक रहे हैं, ते माता खुजरी जी वेख वेख के पिछर दी, कोई मन च ख्याल आ गया कवि जी हुण साहबजादे जवान हो गए, इन्हों को परिवार देखो ना कितने सुंदर मुख रहे, चौड़ियां छाती, कितने सुंदर शरीर, मेरा चित कर रहा है इन्हों दी हुण शादियां कर दे, शरीर का कोई पता नहीं, मन दे अंदर एक ख्याल आया अपने हथी देखा इन्हों घोड़िया से चढ़ा, तो हजूर मुस्कुराहट है, सतगुरु सच्चे पातशाह मुस्कुराए, मां जी साहबजादियां दी शादियां हां मेरी इच्छा है, मेरे दिल की एक तमन्ना है, हजूर कहन लगे मां जी फिर फिक्र न करो, मंगनियां तो इन्हां दियां हो चुकियां हैं, शादियां दियां तारीखां भी नेड़े ही हैं, हैरान हो गई मां जी माता जी दी, कवि जी मंगनियां कर दी हां मैनू दसिया ही नहीं, तुसी अपने आप ही मंगनियां की, फिर ख्याल रखे जे विवाह वेले शादियां वेले आनंद कारज वेले मैनू जरूर याद कर, हजूर कहन लगे मां जी जिस दिन साहबजादियों का जन्म होया मंगनियां उस वेले हो गई, हम तो विआह दियां तरीखां भी नेड़े हैं, अच्छा फिर मैनू हजूर कहन लगे फिक्र ना करो समा आवेगा, दो दी जंज असी चमकौर लै जावांगे ते दो दी जंज तुसी सरंद लै जाओ कि आखो ए रमजा सन, पर भोली माता नू की पता है
کہ سدگرو کتنے بول رہے اور سما آگے پیری خاص سنگت

हरनंग आज शरनंग जय जय जग कारण श्रेष्ठ वरन जय जय जग कारण श्रेष्ठ वरन मम प्रपारं जय जग मम प्रतपारं जय जग संत जय जग कारण।

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किवन किन्हीं निवल भयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

के सरदार बुलाका सिंह ने नीवी पा ली अते सोचन लगा कि ठीक ही मैं कैरां वाली करतूत कर रहा हां। जे मैं हरमंदर साहब दी शान बदले जान दे दिंदा कि मस्से नाल लड़ मरन वास्ते होर भी सिख आउंदे, कि मैं अपनी जान नूं धर्म नालों ज्यादा प्यारी समझ के भज आया हां। ते फिर सिख ने आप ही जवाब दिता, नहीं, जे मैं उसे ही लड़ के मर जांदा ता हरमंदर साहब दी हो रही बेअदबी दी खबर इन्हां सिंघां नूं कौन पहुंचाउंदा। इन्नी गल सोच के सरदार बुलाका सिंह ने जथेदार नूं ताना हे।

कदम सुहावने हैं, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ने किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते हैं।